0: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास, हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
1: Your music, your request.
2: This is radio station.
3: Radio Aman.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
5: Zamzam hair oil.
4: De vikhtano kulakri.

0: सुकून नहीं है। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूं मेरा कोई घर नहीं है। मेरे मोहतरम अजीजो भाइयों दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर, और 95% नौजवान बैठे हुए हैं, इससे और ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह हम सब का ये जमा होना कबूल फरमाए। ये जिंदगी एक अमानत है जिसे मैंने शुरू नहीं किया, जिसे मैं खत्म नहीं करता, कोई और है जो इस जिंदगी को शुरू करता है, कोई और है जो इसे खत्म करता है। वो कौन है उसका जानना जरूरी है कि मुझे पता चले मुझे क्यों पैदा किया है। मैंने कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं भेजी, आप सब में से किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी। क्यों आ गए, कौन है, किस लिए पैदा किया है, जो कुछ हम कर रहे हैं क्या इसीलिए पैदा हुए हैं कि माल की दौड़ लगाओ, रेंट इकट्ठे करते करते करते करते करते मर के कब्र में फिर खाली हाथ चले जाओ। किसी को धोखा दिया, किसी से फ्रॉड किया, किसी से झूठ बोला, किसी से गलत किया, और इधर से पैसे इकट्ठे किए, इधर से इकट्ठे करते करते करते जिंदगी की शाम हुई, सारा किया कराया औरों को देके जाके मिट्टी का ढेर बन के मिट्टी हो गया। क्या हम इसीलिए पैदा हुए हैं, और ये मौत क्यों आती है? मैं तो मरना नहीं चाहता, हम में से कोई भी नहीं मरना चाहता, लेकिन मौत पीछे है, लगी हुई है, उससे कोई निकल नहीं सकता, उससे कोई भाग नहीं सकता। अल मौत, हजरत अली का फरमान, लैस मिनहुल फौत इन अकमतुम लहू अखदकुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम। मौत से कोई टक्कर नहीं ले सकता, जिसने भी टक्कर ली वो गिरा, जो भागा वो पकड़ा गया, जो लड़ा वो मारा गया, वो हार गया। ये क्या है, हम में से कोई भी मौत नहीं चाहता है, फिर मौत पीछे लगी हुई है, फिर कोई जला देता है, कोई बहा देता है, कोई दबा देता है। ये कहां जाते हैं, ये किधर चले जाते हैं, ये कहां गुम हो जाते हैं, ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और इनका जवाब मेरी अकल में कोई नहीं है, मैं नहीं जान सकता हूं, अपनी अकल से मैं नहीं जान सकता हूं कि ये सब कुछ क्या है और क्यों है। फिर क्या मौत के बाद भी कुछ है, या बस ऐसे ही खत्म हो गई कहानी, कोई रोते रोते मर गया, कोई हंसते हंसते मर गया, कोई जालिम बन के मरा, कोई मजलूम बन के मरा, कोई पाकदामन बन के मरा, कोई बदकार बन के मरा, और दी एंड हो गया, ये कुछ और भी है। ये सारे मेरे अजीज हो, आप नौजवान नस्ल बैठे हो, मुझे खुशी हो रही है आप सबको देखकर। हमारी जिंदगी की शाम है, आप लोगों की सुबह है, तो अभी से रास्ता तय करो, अभी से मंजिल तय करो, अभी से अपने बनाने वाले को पहचानो और जानो कि क्यों पैदा किया है। ये इल्म सिर्फ नबी लेकर आता है, ये इल्म सिर्फ अंबिया लेकर आते हैं। इन सवालों का जवाब मेरे नबी ने दिया, मेरे अल्लाह ने उन पर इल्म उतारा, उन्होंने इनका हल बताया, जवाब बताया। ये आसमान, ये जमीन, ये हवा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये दिन, ये रात, ये दरिया, ये नहरें, ये समंदर, ये मछली, ये उकाब, ये सांप, ये बिच्छू, ये सब क्या है, किसने बनाया है, इसका जवाब इंसानों के पास नहीं है। लिहाजा आज भी एक बहुत बड़ा तबका है, हर कॉन्टिनेंट में है जो ये कहता है हई हात लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन। ये मौत के बाद कुछ नहीं, सब फ्रॉड है, मर गए खत्म, दी एंड फिनिश, दी एंड हो गया, फिनिश हो गया, लिहाजा जाओ जो मर्जी करो, मजे करो, मौज करो, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। ये एक बहुत बड़ा तबका पहले भी था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, कुछ नहीं है, सब गलत है, ये खुद ब खुद हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये खुद से हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं होता है। हेच चीज खुद ब खुद चीज नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवा ई नशुद उस्ताज कार ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। ये हमारे बर्रे सगीर के बड़े शायर इकबाल की शायरी है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती, लोहा पड़े पड़े चाकू नहीं बनता, लोहा एक करोड़ साल पड़ा रहा और एकदम तलवार बन गया, और एक करोड़ साल कॉटन पड़ी रही और एकदम कपड़े बन के तुम्हारे जिस्म पर फिट हो गए, ऐसा नहीं होता, हर काम सीखने से होता है। मौला मौलाए रोम, पहले मुल्ला रोम थे, वो मुल्ला रोम से मौलाए रोम बने शम्स तबरेज के हाथों में हाथ देकर, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम, लेकिन फलसफा और मंतिक गालिब। सबक पढ़ा रहे हैं, किताबें रखी हुई हैं, सामने हौज है पानी का, शम्स तबरेज आए देहाती शक्ल नंगे पांव और बड़े भोलेपन से कहा मौलाना ई चीज, वो जो किताबें पढ़ी थी कि मौलवी साहब ये क्या है, तो उन्होंने देखा देहाती अनपढ़ जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बर से कहा इयां अस्त के तू नमीदानी, जा जाओ अपना काम करो, ये वो है जो तू नहीं जानता। शम्स तबरेज ने एकदम आगे बढ़कर सारी किताबों को धक्का दिया, किताबें सारी पानी में जा गिरी। तो कोई प्रेस का जमाना तो नहीं था कि जाओ बाजार से और ले आओ, मौलाना रूम की हाथों से लिखी हुई किताबें वो सर पकड़ के बैठ के

0: जी कॉल से मिली प्रोग्राम से बैक टू बैक कॉल्स सवाल प्रोग्राम के मुकड़े दे किसी कॉल बने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सो खबर की किम देना
1: मोहम्मद हसन खबरी का मरकज कुरोना
0: मोहम्मद हसन बखेर उगले करकना सही का नाम
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: इश्मा कॉस्मेटिक प्रोग्राम की तरफ हर के लिए भी अच्छा जी शाह ठीक शाह जवाब मैं नोट के बाहर की तरफ सही दो
1: सही
0: डेरा मनना कॉल को बोले यो जहान मनना चाहिए प्रोग्राम के देर होता कॉलो को डेरा जिया था मनना।

0: अच्छा जी, मौलाना से बिल्कुल मैसेज कर दे मंगल मिलना तो थोड़े रजिए तो मनाना को सानी घटक अंबेरी किलना मैसेज कर दे मैसेज नवियर रोशा वेच सानी घटक अंबेरी किलना दुआ सलाम सजी संगे बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुल्ला यो जहान बने ना देन अलवा फार्मूला मैसेज कर दे अच्छा जीदा हो मतलब बजवट रेडियो बने हो सो बजवट रेडियो बने ना डेरा मने ना देन अलवा शाह लकमर वत मैसेज कर दे गोला लाई चुकम दे निहान मलिक मसीद क्या ना मैसेज कर तो डेरे से तो मने ना के मैसेज करे दे अलीना हटक को एक हटक मैसेज करे दे तो थोड़े देर से तो बने ना और जो भी रुकड़े हो मैसेज बने एक्सेप्टेबल न दे सही दा देना इलवा चा हमिद खान चुकम दे जवाब रुकड़े तो थोड़े देर से मना टाइम रसर खत्म शुरू दे होरेन हटक तो थोड़े देर से तो मना क्यों देने लवा मजलूम हटक तो थोड़े देर से तो मना टाइम देर से खत्म शुरू इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम की मदद से मुलाकात इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का जरूर इस्तेमाल किए व्हाट्सएप से हर जगह अवेलेबल दी और कम रिंग हेल्पलाइन नंबर मैंने कॉल जरूर करवाई चर्चा मिल लीजिए 0342311 2292 नंबर मैंने कॉल जरूर करवाई नेक्स्ट प्रोग्राम की दर्शक की मुलाकात तेरे फिर दुआगान की आसते दौलान
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4 Pahadur, Global FM 91 Dear Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Tank. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है कैसे नचर पाकिस्तान की, ये आवाज है तंदुरुस्ती की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की। जी जनाब, एक नए दिन के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब मुझे कहते हैं खलील ताबे जमान, और आप अपने शहर के रेडियो के जरिए कैसे नचर पाकिस्तान का क्या कहते हैं जनाब इसको मैटिन टाइम सुन रहे हैं जनाब। आप सबको, आप सभी लोगों को जनाब, तमाम कजिन बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, सांद नाना नानी, सभी सुनने वालों को खलील ताबे जमान का सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए। जनाब जुमा का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब आज जुमा का मुबारक दिन है, और उम्मीद यही करता हूँ कि जनाब आप भी जुमा की नमाज अदा कर चुके होंगे, खूबसूरत से साफ सुथरे कपड़े पहनकर जनाब, खुशबुएं लगाकर, साफ सुथरे होकर जनाब, सफाई के ख्याल करके आज का दिन जो है एक अलग से अंदाज से गुजार रहे होंगे। क्योंकि जनाब जुमा का जो दिन होता है वो आम दिन नहीं है, बल्कि बहुत ही खास दिन है, और इस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। तो जनाब आम बंदा तो आम होता है, लेकिन सरदार की जो कीमत होती है, जो उसकी कदर कीमत होती है, वो सबसे हटकर होती है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आज का भी आपका दिन तमाम दिनों से बिल्कुल ही हटके होगा, बिल्कुल जनाब, और बहुत खुशी आप इसे स्पेंड कर रहे होंगे। क्योंकि जनाब मुसलमान के लिए जो जुमा का दिन है वो त्योहार की अहमियत रखता है, और ईद से मुशाबे किया गया है इस दिन को। तो जनाब खुशी का दिन और जुमे का दिन उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप गुजार रहे होंगे, स्पेंड कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने इस

और जैसे कि कल भाई बता रहे थे जिनकी शादी होने वाली नए है नए नवेले दूल्हा, टांग से अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि मैं आपकी क्रीम लगाई है मेरे स्किन साफ हो गई है, उनके शादी भी है तो इंशाल्लाह 4 चांद लगेंगे मेरे भाई को। और जो भी शादियां करने वाले हैं भाई, या जिनकी शादियां होने वाली हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही, तो भाई ये क्रीम शादियां करवाने वाले हैं, जनाब लगाएंगे तो आपकी रंगत ठीक होगी। और रंगत जब ठीक होती है तो खुद ब खुद रिश्ते भी होते हैं। रंगत बड़ी रुकावट होते हैं जनाब, झुरियां बड़ी रुकावट होती हैं, छाया बड़ी रुकावट होती हैं, दाग धब्बे आपकी शादी में बड़े रुकावट होते हैं। ठीक है जनाब, ये तवीज ये भी होते हैं बाज़ुकात रुकावट, लेकिन उन सबसे बढ़कर क्रीम की जरूरत होती है। आपको एक अच्छी क्रीम अगर आपको मिल गई है तो बहुत जल्दी आपका रिश्ता हो जाएगा। तो केसन की ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल कीजिएगा जो कि मुकम्मल रेंज में है। इसके साथ आपको साबुन भी मिलेगा, फेस वॉश भी मिलेगा और क्रीम भी है। क्रीम का मजा ये है, आगे सर्दियां आने वाली है, मौसम अच्छा होगा, आपको ये हर क्रीम से ज्यादा रिजल्ट देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये डे एंड नाइट क्रीम है। रात को आपने इसका अच्छा सा लेप लगाना है और दिन के वक्त आपने इसका हल्का सा लेप लगाना है। ठीक है जनाब, टाइम हमारे पास जो है कम होता है, तो जनाब टांग वाले अगर इस वक्त एक्टिव हैं और मोबाइल अगर उनके हाथ में है तो भाई आ सकते हैं हमारे साथ और अपनी 2-4 बातें कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ हमारा वक्त बहुत कम होता है, आजकल आधा घंटा होता है। तो टांग के अंदर जनाब जितने भी बड़े स्टोर है, आप जहां पर भी जाएंगे, जैसे कि हाजी जरबत खान है, मंसूर जनरल स्टोर है, इमरान जनरल स्टोर है, अरबाब जनरल स्टोर है, सिटी जनरल स्टोर है, अब्दुल्ला जनरल स्टोर है, नसीम जनरल स्टोर है, ठीक है जनाब, मदीना जनरल स्टोर है, इन सब दुकानों के ऊपर आपको केसर नेचुरल पाकिस्तान के सारे प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे, बाशमूल ताकत प्लस के, या फिर हाजमा कंट्रोल सिरप के, या फिर शिफाय दर्द के, या फिर हमारी ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं केसर। ग्लूटावाइट क्रीम आगे आने वाले दिनों में आपको ये डबल एडवांटेज

इस तरीके से देगी, इस तरीके से देगी कि आप रात को इसको लगाएंगे और दिन को भी इसको लाएंगे। जब 24 घंटे इन विटामिन को, विटामिन सी को, हाइलुरोनिक एसिड को, ग्लूटाथियोन को मौका मिलेगा आपकी स्किन के ऊपर रहने का, तो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब

होकर ये अपना जलवा दिखाएंगे, आपको आपकी स्किन के ऊपर रौनक नजर आएगी। जो डलनेस है, जो कालापन है, जो स्याह रंगत

जनाब हमारा नंबर आप लोगों के पास जीरो आपके साथ हूँ जी जनाब, तीनों रेडियो स्टेशन टॉक में रेडियो अमन देर खान में ग्लोबल एफ एम 91 पार्टून में रेडियो पैगाम 97.4 से कैसे नज पाकिस्तान का जी जनाब आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं 03449363366 पर और एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। टेलनार का नंबर है ना, टेलनार पर ही आप

ज्वाइन कर रहे हैं 03449363366 कर और एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, नार का नंबर है ना, टेलनार पर आप

ब्रेक होके आ रही हो। एनी जो आज ही हमारे साथ नेट का बहुत बड़ा इशू है और जुमा का दिन है और मैं ये बात कर रहा था कि टांक के साथ जब भी मेरा लाइव शो होता है तो नेट का बड़ा इशू होता है। ये तीसरा मुसलसल जुमा जा रहा है कि जुमे के

0: वहाँ खतीन है और मैं ये बात कर रहा था कि टांक के साथ जब भी मेरा लाइव शो होता है तो नेट का बड़ा इशू होता है। ये तीसरा मुसलसल जुमा जा रहा है कि जुमे के दिन हमारी ट्रांसमिशन बड़ी यहाँ पर लो जाती है। एनीवे जनाब, टांग के अंदर अली भाई मौजूद थे हमारे साथ और कह रहे थे कि मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा और प्रोडक्ट खरीदने का, लेकिन जनाब शिफ हैदर को इस्तेमाल कर चुके हैं। टांग वाले नई प्रोडक्ट ताकत प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजमा कंट्रोल सिरप को बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजमा कंट्रोल सिरप बहुत ही अमेजिंग चीज है और हाजमे के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं। आप में से जितने लोग भी सुन रहे हैं, नेचुरल और एडवांस फॉर्मूला है और इस इसे जब इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फौरी तौर पर सुकून मिलेगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं केसन के जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शिफाए दर्द है, जैसे कि हमारा ताकत प्लस फार्मूला है। ताकत प्लस के नाम से वेट गेन है बेसिकली, ये हमने फार्मूला बनाया है वजन बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोग जिनका वजन कम है, ठीक है जनाब, जिनका वजन कम है तो वो जरूर इस्तेमाल करें केसन का ताकत प्लस। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इशू है तो वो अच्छा, बस वो थोड़ा सा कट कट के आ रहा होगा, लेकिन चल रहा है, लाइव चल रहा है वहाँ पर भी। मास्टर साहब
1: रिकॉर्डिंग है।
0: अच्छा रिकॉर्डिंग है। अच्छा चलो, बस वो हो सकता है रिकॉर्डिंग। बहरहाल आपकी आवाज इधर दोनों स्टेशन के ऊपर आ रही है, 91 डेरा में भी और पहाड़पुर में भी आ रही है आपकी, ठीक है। वहाँ पर शायद नेट का इशू हो तो। और आप सुनाए, ठीक है, आप खरीय से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ताकत प्लस इस्तेमाल किया आपने, पी रहे हैं या नहीं पी रहे?

0: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश, बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप, दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास, हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले, अवेलाजी सुनत अमल ले।
4: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो।
3: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
3: 0319-55-23-404।
1: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
5: चिनूर दम मोहम्मद रफाए जहान मुसनिद
6: जमील खाना विले खफाए
7: इंजीनियर भाई खफा बवाले नहीं हम खुलेन में बदबूजी गाखुन में हम जेर भी और चिकला टूथब्रश कवन मोराई में भी ना हम कभी
6: जमील खाना देता अफगान इस जरूरत मरता अरसा चिलूट से घर दनाली गली प्राइमरी बॉयज नंबर दो स्कूल खोता निजते हाफे जाहिर ट्रेडर ने तुताजा स्मार्ट पाउडर रोक लो इनशाला द टूले मसले वो देहाल सी।
7: वाह इंजीनियर भाई इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
8: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन।
9: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला यो रास, नो टेंशन ब्यूटी क्रीम दमख धनो पिरसरो हल्को चियानो और दमख विष्टानु तपारा। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम उस्तासो पुखपल हार डिस्ट्रिक्ट टांग के हपासा न मिले विदेशी पोहर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर के अवेलेबल दी। नो नामी या सते नो टेंशन ब्यूटी क्रीम द खुला रास, नो टेंशन ब्यूटी क्रीम।

0: Your station. बीमारी हकता और इलाज ही सुनत अमल दे उसको तास्ता हर किस्म बीमारी भी नुमायू सीखे गयी माँ मायूसी गुनादा उस तक पुलु बीमारो और सही इलाज दपारा तशरीफ रोड़े शे सेहत होम्यो मेडिकल हस्पताल ता और होम्योपैथिक तरीके इलाज सरा पुलु बीमारो इलाज कवल शे पता याद साते सेहत होम्यो मेडिकल हस्पताल जड़े दखाने गलाए नूर मार्केट तंग बाजार जिले टांग
1: आपका अपना रेडियो रेडियो 88.4 नेटवर्क।

तरह की प्रोग्राम वास्ते लोग कुछ पसंद करने पे टांग गर बुढ़ा तू जावेद बलोच थे इब्राहिम खान नाल नाल सलीम कटीखेल से भी सारा प्रोग्राम सुन रहे पेन अदन खूबसूरत प्रोग्राम है खूबसूरत आवाज खूबसूरत अंदाज मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया सलीम कटीखेल मोहम्मद इब्राहिम खान ते जनजेब

0: लोधी बलोच साहब सारा प्रोग्राम सुनने पैन जी। लोधी बलोच गरा बलोच तू सारा प्रोग्राम को पसंद करने पैन बहु मेहरबानी सही, हमेशा सारे प्रोग्राम में शिरकत करने रहने सही। खुदा तरस इंसान, लोगों के नाल मदद करने वाला इंसान, लोधी बलोच जे रहे कैं वेली भी तुसा उन्दे अकाउंट दे उते नंबर दे उते पैसे सट सकदे वे ते ओ तुहाडा हक दे रहे गरीबां तक दे रहे जरूर बिल जरूर पुछेंदे, तुहाडे सदकात को अतियात को बिल्कुल जाया नहीं करेंदा, जिथा ओ हकदार हुंदा हक उन्दे कोल जरूर पहुंचदा है। 09635114588 प्रोग्राम दे आखिरी लम्हात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: असद
0: बिरा केरा काम करंदे वे
1: जी? मैं तो सिरफोन दा दुकान है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी। टाग दे वे?
0: अच्छा टाग दे मोटरसाइकिल दा
1: जी।
0: कारोबार चंगा?
1: कारोबार चंगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइन चली पई
0: है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह
1: जी जी।
0: अच्छा जरा टॉपिक गिन के आए बैठे हैं सुनो ने। अच्छा अच्छा सारा जरा अज का टॉपिक है सबर करना, शुक्र करना। इस दे उते कोई सबको दसे सो जो सबर करना
1: है तबो बेहतरीन जे सबर ते शुक्र जे रहे बो अच्छी चीज है। इंसान को हर इंसान को ये करना चाहिए।
0: हम्म।
1: सबर शुक्र नाल जिंदगी जो है इंसान दी।
0: अते अगर कोई सबर नहीं करना ते जल्द बाद जरा फैसला कर बने ते वला उनो ते कितना पछतावना पंदे इंसान को
1: उनो सारी जिंदगी दा पछतावानो ना जी।
0: अच्छा यानी के सकू जे रहे अल्लाह दी रजा दे सबर करवाना चाहिए।
1: सबर करना चाहिए बेशक हमी खुशी इंसान दे नाल इंदे ते जज्बात इतनी आना चाहिए सबर नाल हर काम गिनना चाहिए।
0: जी जी जी जी बेशक से। बड़ी मेहरबानी का यार दोस्त को दुआ सलाम देसो।
1: जी एक शफी खान है। शफी खान को बहुत बहुत सलाम। ते वहीद खान है, ते अहमद खान है, ते मुदस्सर खान है, ते सारा को सलाम दुआ।
0: बहु मेहरबान सही, बहु बहु शुक्रिया। आखिरी कॉल खिन 09635114588 साले प्रोग्राम दे आखिरी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। बिरा
2: क्या हाल है भाई सर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिरा खैरियत ठीक ठाक वे?
2: खैर खैरियत से
0: अल्हम्दुलिल्लाह सही। कौन साहब इन सारे नाल? यूनस चौकीदार। केरी जा तू? टांग सिटी। किवें हाल है भरा? खैरियत है ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। किवें ड्यूटियां रहने खड़े हुए अपनी खैर खरियत नाल?
2: जी जी।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। रात दी चौकीदारी होंदी दी दी होंदी है?
2: रात दी।
0: अच्छा अच्छा। ये तबीयत सी अच्छी है
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा आज एक मैं मौजू गिन के आम तो सारे आखिरी कॉल आ रही है सबर के हवाले नाल कोई पैगाम दो लोगों को।
2: सबर दे इनाल तो सबर करे से
0: जी ते वत फल जैसे
2: वत फल जाते
0: हैं। ये सबर दा फल मिले वाने कितना मीठा होंदे?
2: जी हां जी हां
0: मीठा होंदे ना सबर दा फल?
2: बिल्कुल बहुत मीठा
0: होंदे। बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक तो आपको हमेशा खुश रखे ते अल्लाह पाक जे रहे ड्यूटी तुम्हारी एहसन ते अच्छे तरीके दे नाल जे रहे लंघावे।
2: आमीन
0: तुम्हारे नाल। बहु मेहरबानी खान, बहु बहु शुक्रिया, बहु बहु मेहरबानी सही। यूनस चौकीदार हम सारे नाल टांग तू प्रोग्राम दा वेला भी तोड़ को पुजदा पिया है ते सारे सोने सड़ना नहीं है कालां भी आनिया पियन बस एक काल मैंने चाहवा तो वद भी ज्यादती होसी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम जोई साहब क्या हाल है?
0: खैरियत है बिरा ठीक ठाक ही वे
3: अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवान रणवाल का लेना पे
0: जी जी जी।
3: टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक ये
0: बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया।
3: तहमल तब अच्छी चीज है लेकिन टांक सबर तहमल और बर्दाश्त बिल्कुल ना दिखो नहीं
0: खत्म थी।
3: मिसाल जनाब ਸ਼ਵਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 63 ਤੱਕ ਆ ਵੰਨੇ ਨਾ
4: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
3: ਤੇ ਕਹਿ ਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦੂ ਜਾਂ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੀ
4: ਬੇਸ਼ੱਕ
3: ਔਰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋ
4: کمال جملے یار کمال کمال خوبصورت
3: بڑے اچھے ہوں میں آپ خود دیہاتی ہوں
4: اچھا کیر جا کو گل کرن پے برا
3: سٹی دے لوک دا بازار جاندا پیو تے کہندا رستہ تو تھوڑا جیا روک جا صرف
4: 15-20 چولا میں بنوایا تے پروگرام دا ٹائم جڑا بالکل ختم پیا نیکسٹ پروگرام کال بھی ضرور کرنی ہے ٹاپک تے الاونا بھی ضرور ہے بہت بہترین گلیاں تساں کیتیاں تے نیکسٹ پروگرام میں تہاڈی فرمائش جڑی ہوسی میں پوری کرے سا انشاءاللہ خوبصورت گل سارے شیئر کیتیاں جناب

0: मैसरा पदे नंबर रविताऊ कई 0313-9765-005।
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτα ο βγαίνει για πατασαπάρ, σε δετάσα εγώ χαστιδί.
1: Για να τι σε τάρκα να πασαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, ο χαστιδί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national ο μάρτι national, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βορειβί. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίγε δασταράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γκυλε με χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορειβί, σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरों उदार तो ऐश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना ऐश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी जी कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात ऐश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गोलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर तक मिला भी जी

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: रेडियो अमन कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन आपके मन का अमन, मन का अमन।
3: रेडियो अमन
4: Asalve,
5: Radio Amman.